0: Panorama, baba kosta önünce.
1: Taktı tozu. Tak taki, çirizini, sansere, maskari. Diz baba, şimdi kadar, lara kapar mantı kapar. Çirizini bitir baba, roman bana. Yürü bana, çoğu sapma tezleri bana. दिल्ली प्रमाण से कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं तो छत्ते उतारने, सब यही को कह रहा हूँ मैं अपने गांव ना मनो पसी भूल गई, गांव में का सब वही मान से बनाएगा, रात मुझे क्या मिलेगा, तेरी बाबा देगा ता

गर्नुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रि चौक प्रोपाइटर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 98621 37744 र 98153 87775।